0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल और कई सारे लोगों के जहन में सवाल आता ही है। मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में किसी ना किसी जिंदगी के मोड़ पे तो ये सवाल आता है कि आखिर ये इश्क बला क्या है। इरफान सतार साहब की एक बड़ी खूबसूरत गजल के दो शेर सुना रहा हूँ आपको, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि ये इश्क क्या है। अपनी खबर ना उसका पता है, ये इश्क है जो था नहीं है और न था है, ये इश्क है। और पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, लेकिन जो तुमसे मिलके हुआ है ये इश्क है। आए हाय। और इश्क ऐसी चीज है ना, रूप बदलती रहती है, तो जितने सवाल हैं उतने ही जवाब। आपके लिए इश्क क्या है बताइए मुझे। मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
1: हाँ बोलिए
2: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात
2: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है क्या?
2: आप तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल है क्या? दिमाग खराब
2: है क्या? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे? अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी। अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पकड़ा
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको रूबरू कराया जाए हमारे आज के शायर सुदर्शन
2: फिल पे रूबरू
1: कि आपको रूबरू कराया जाए हमारे आज के शायर सुदर्शन फाकिर साहब से।

जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। मैंने मुजरिम को भी मुजरिम ना कहा दुनिया में, मैंने मुजरिम को भी मुजरिम ना कहा दुनिया में, बस यही जुर्म किया है कोई अफसोस नहीं। वाह, शेर बड़ा गहरा है दोस्त, और मैं इससे सबक ये पाता हूं कि मुजरिम को ना हमेशा मुजरिम कहना चाहिए, वरना अफसोस के साथ जीना पड़ेगा। मैंने मुजरिम को भी मुजरिम न कहा दुनिया में, बस यही जुर्म किया है कोई अफसोस नहीं। तो मुजरिम अगर कोई गलत करता हुआ कुछ दिखे, कॉल देम आउट मेरे ख्याल से। तो स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Efficient, very complex,
1: clumsy और
2: confusion ही confusion.
3: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
6: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
7: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है.
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और न जाने कितनी बार दिल तोड़वाने के बाद भी, न जाने कितनी बार धोखा खाने के बाद भी, जो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनको प्यार करने की कुछ ऐसी बीमारी होती है कह ले कि उनकी वो आदत नहीं छूटती प्यार करना। वसी शाह साहब की एक गजल के दो शेर मैंने पढ़े और मुझे लगा ये तो आपको सुनाने चाहिए। उन्हीं लोगों के लिए नजर करता हूं कि हजारों दुख पड़े सहना मोहब्बत मर नहीं सकती, हजारों दुख पड़े सहना मोहब्बत मर नहीं सकती, है तुमसे बस यही कहना मोहब्बत मर नहीं सकती। तेरा हर बार मेरे खत को पढ़ना और रो देना, मेरा हर बार लिख देना मोहब्बत मर नहीं सकती। आय हाय हाय हाय, क्या जमाने थे यार, खतों पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल जाती थी, है ना। अब वीडियो कॉल नहीं पूरा कर पा रही है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: It's 8:30 PM. Mirchi Time Check brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम RK Jewels. Best quality, best price.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और अब है मेरा सबसे पसंदीदा वक्त
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और हाँ जी, वक्त है आज का ताशी अनप्लग्ड आपको नजर करने का। और ये जो गजल है अमीक हनफी साहब की है और मेरी बड़ी पसंदीदा है। और आजकल का जिस तरीके का वक्त है ना, कि भेदभाव बढ़ता जा रहा है और लोगों के बीच में एक दूरी आ रही है, आज के जैसे वक्त में मेरे ख्याल से इस गजल का मानी और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोगों तक पहुंचे। This is मैं हवा हूं कहां वतन मेरा।

उम्मीद है गजल आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो ऐसी ही और गजलें आपको मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। वहां मुलाकात होती है आपसे। तब तक स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और दिल को ना कभी भी नाउमीद नहीं करना चाहिए। और ये नाउमीदी वाली गजलें भी कई लिखी गई हैं एक्चुअली। जैसे एक नाउमीदी की सी गजल नासिर काजमी साहब ने लिखी कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। ये गजल बड़ी खूबसूरत है लेकिन फ्लेवर जो है ना वो ऐसा नाउमीदी वाला है, दिल हारने वाला है। तो साबिर जफर जी ने इसका जवाब लिखा कि भाई साहब हो सकता है ऐसी नाउम्मीदी वाला दौर कोई रहा हो लेकिन हिम्मत मत हारो। तो उन्होंने जवाब में क्या लिखा कि नए कपड़े बदल और बाल बना, तेरे चाहने वाले और भी हैं। आय हाय हाय हाय, नए कपड़े बदल और बाल बना, तेरे चाहने वाले और भी हैं। कोई छोड़ गया ये शहर तो क्या, तेरे चाहने वाले और भी हैं। कई पलके हैं और पेड़ कई महफूज हैं, ठंडक जिनकी अभी कहीं दूर न जा, मत खा कुड़ा, तेरे चाहने वाले और भी हैं। ये बात हमेशा अपने जहन में याद रखिएगा। अगर कोई चला भी जाता है, नाउम्मीदी से ही आप क्यों ना गुजर रहे हो, नए कपड़े बदल और बाल बना, तेरे चाहने वाले और भी हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा
1: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूँ?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप, मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग 0 closing cost रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: ओह नो!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

प्यारी सी कविता है, कहते हैं कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा, जहां गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया, हम दोनों ने वहां प्रात का सूर्य उगाया। आर्ट का जो मकसद है ना जिंदगी में, वो यार आपको कुंठा से, दिक्कत से बाहर निकालना है, आपको कुछ रियलाइज कराना है, जिससे आपको लगे कि यार कितनी सही बात है, मुझे ऐसे सोचना चाहिए। और तभी ना मुझे बड़ा भरोसा है, ये सब एआई वेआई वाला बड़ा शोर हो रहा है आजकल, लेकिन एक वक्त पे ना ये शोर शांत हो जाएगा, क्योंकि अंत में जो वो कुंठा सुलझाने वाला भाव है ना, वो एक इंसानी एक इंसान के लिए कर सकता है। दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा, जहां गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया, हम दोनों ने वहां प्रात का सूर्य उगाया। जिंदाबाद केदारनाथ अग्रवाल जी की इस कविता के बाद एक अच्छा सा नगमा, अच्छी सी गजल तो बनती है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लिए पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आप कताशी पलटे अपनी डायरी के सफे और कर दे आपके नजर। और ये जो कामशुदा इंसान होता है ना, नौकरी पे जाने वाला इंसान, इसका जीवन कहीं ना कहीं 8 से 5 के बीच में नपके रह जाता है। उन्हीं लोगों के लिए बासिर सुल्तान काजमी साहब ने अपनी ये गजल लिखी जिसके चंद शेर आपके लिए नजरे हैं। कहते हैं कि कर लिया दिन में काम 8 से 5, कर लिया दिन में काम 8 से 5, अब चले दौर जाम 8 से 5, चांद है और आसमान है साफ, रहिए बालाए बाम 8 से 5, बालाए बाम मतलब छत पे रहिए बालाए बाम 8 से 5, अब तो हम बन गए हैं एक मशीन, अब हमारा है नाम 8 से 5, शेर क्या शायरी के बारे में सोचना भी हराम 8 से 5, खुद कुछ खरीदे तो भाव 5 के 8 और बेचे हैं तो दाम 8 के 5। वाह जी वाह, मतलब आज के वक्त की हमारी जो कश्मकश है जिंदगी की, जो परेशानियां है जिंदगी की, उनको इतने शायराना अंदाज में पेश कर दिया है। जिंदाबाद। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ और 8 से 5 के इस चक्र को तोड़ता हुआ है आपके लिए हाजिर। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपके ताशी है आपके साथ, आदाब। और आजकल ना जमाने में ये सेल्फ हेल्प बुक्स का बड़ा प्रचलन चला हुआ है। इंटरनेट पे भी जाओ तो कई सारे लोग पॉडकास्ट में बैठ के ज्ञान दे रहे होते हैं कि भाई साहब ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा। किताब पढ़ लो ऐसी जिसमें आपको सिखाएंगे कि अरे आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। अमा गुरु, सीधी सी बात ये है कि आप जो अपने टीचर हो सकते हैं, सब कुछ आपको पता है, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा जानकारी होना इज नॉट द सॉल्यूशन। जैसे अल्लामा इकबाल साहब का शेर सुनिए आप, कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वाह जी वाह, कितनी गहरी बात। कि मतलब दोस्त, सब कुछ अंदर ही है। हाँ, थोड़ा ज्ञान होना भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल के जमाने में हो पता है क्या रहा है, लोग ज्ञान ही लेते रह जा रहे हैं, वो ज्ञान ही के चक्र में फंसे रह जा रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन पे नहीं जा रहे। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
1: हाँ बोलिए
2: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, आप तो सर पूरा बता दिए।
1: क्या करो भैया, कहाँ
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल है, दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
2: अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और अंग्रेजी की एक कहावत बचपन में पढ़ी थी कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, है ना, कि जिसको नहीं पता है कुछ वो तो जी रहा है ना अपनी मस्त जिंदगी, उसको कुछ नहीं पता है ना, तो उसको टेंशन नहीं है। मोहम्मद रफी सौदा साहब का शेर देखें इसी ख्याल पे, कहते हैं कि सौदा जो बेखबर है वही यहां करे है ऐश, यहां पे वही ऐश कर रहा है। सौदा जो बेखबर है वही यहां करे है ऐश, मुश्किल बहुत है उनको जो रखते हैं आगही। बिल्कुल सही बात है दोस्त, जितना इस जीवन में पता होने लग जाता है ना, उतना ये भी पता होने लग जाता है कि कुछ नहीं पता है। जिसने थोड़ी किताबें पढ़ी होती हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान, जिसके जहन में जज्ब हुआ होता है, जिसके जहन में परकुलेट हुआ होता है ना थोड़ा ज्ञान, उसको ये समझ आ जाता है कि यार दंभ करना, घमंड करना सही नहीं है, मुझे बहुत कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा कोई इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेगा हमेशा, अरे हाँ हाँ ये है वो है दुनिया जहान है, आप समझ जाइए कि वो कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा कोई इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेगा हमेशा, अरे हाँ हाँ ये है वो है दुनिया जहान है, आप समझ जाइए कि वो

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हाँ जी एंड जस्ट लाइक दैट वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ। और दोस्त वक्त की आदत है, किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन ऑफ कोर्स जाने से पहले आपको एक ताशी अनप्लग देना तो बनता ही है। और आज की जो गजल है वो अमीक हनफी साहब की लिखी हुई है, मेरी बड़ी पसंदीदा है। और ये जो दौर है जब विभाजन बढ़ता जा रहा है, जब इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है, मेरे ख्याल से इस गजल का जो मतलब है, इसका जो मानी है, वो लोगों पे खुलना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। दिस इज मैं हवा हूं कहां वतन मेरा।

उम्मीद है आपको गजल पसंद आई होगी, और अगर ऐसे ही शेर व शायरी के, गजलों के, नज्मों के आप शौकीन हैं तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर, वहां मैं आपका इंतजार करूंगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: the phenomenon called Madhuri Dikshit. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. और ये फिनोमेना ना, पहले साइंटिस्ट बनना चाहता था. सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी दीक्षित ने एक बार क्या शेयर किया था.
1: मैं साइंस स्टूडेंट थी, मैं माइक्रोबायोलॉजी करना चाह रही थी और मैंने सोचा था, तभी मेरा ड्रीम थी कि मैं जेनेटिक्स में रिसर्च करूंगी किसी दिन. मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था, मैं 3 साल की थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ. तो स्कूल में भी मैं बहुत हिस्सा लेती थी, बहुत ट्रॉफीज जीते हैं स्कूल के लिए डांस कॉम्पिटिशन्स में वगैरह. ड्रामेटिक्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था. मेरे जो स्कूल में मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसकी फ्रेंड थी, उनके फादर राजश्री में काम करते थे. एक दिन उन्हें राजश्री वालों ने कहा कि जरा अपनी नजर रखना, कोई लड़की है क्या, ऐसा ऐसा रोल है. तो पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा नाम सोचा और उन्होंने आके मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा डांस करती है. हम लोगों ने कहा नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में वगैरह, क्योंकि ना तो हम किसी को जानते थे, उनको छोड़ के और किसी को जानते नहीं थे जो मूवीज में हो. लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, कहा कि मिलिए राजश्री वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अपने जैसे लोग हैं. और जब उनसे मिले तो कहीं कॉन्फिडेंस आया नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं. और स्क्रीन टेस्ट हो गई और पता नहीं वो फिल्म हो गई.
0: वेल, ये इनकी डेब्यू फिल्म थी 1984 की अबोध. उसके बाद तो 80s में इन्होंने तहलका मचा दिया था भाई. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी, से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी, बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा,
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: ये तो आपको पता होगा कि 80s में माधुरी दीक्षित की कुछ शुरुआती फिल्में कुछ खास चली नहीं थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर जब सुभाष घई ने उनको डिस्कवर किया तो फॉर्मली प्रॉपरली उनको लॉन्च करने का प्लान बनाया। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या शेयर किया था।
1: जब मैंने अबोध की उसके बाद श्योर नहीं थे क्या करना है, मतलब मैं स्टडीज भी करना चाहती हूँ और मैं फिल्में भी करना चाहती हूँ। आवारा बाप में जैसे सेकंड रोल था, मीनाक्षी शेषाद्री वाज़ द मेन एक्टर, तो 10 दिन 15 दिन का काम होता था और फिल्म यूज़ टू गेट ओवर, तो मैं एक्टिंग भी कर लेती थी और फिर वापस कॉलेज भी जाना शुरू कर देती थी। तो एक बार आवारा बाप के सेट पे मुलाकात हुई सुभाष जी की, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कर्मा मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा डांस है आपको करना है, विल यू डू इट। तो मुझे डांस तो बहुत पसंद था, सर यस आई डू इट। तो हमने वो किया, पिक्चराइज किया और तभी सुभाष जी ने मुझे बोला कि आप ये ऐसे फिल्में नहीं करना, कि आई वॉन्ट टू लॉन्च यू अगैन बिकॉज आई थिंक देयर इज पोटेंशियल इन यू। एंड दैट्स हाउ आई गॉट अनदर चांस। आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म फैमिली सो वी डिडंट नो एनीथिंग एट दैट टाइम। मतलब जो इतने सारे वो एड्स भी आ गए तो मुझे कोई असर नहीं पड़ा उसका भी, मुझे पता ही नहीं था कितनी बड़ी बात थी एट दैट टाइम। आज व्हेन आई लुक बैक आई फील ओह माय गॉड ये हुआ था तभी। तो ऐसा हुआ और यस आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम।
0: अच्छा घई साहब के प्लान के साथ गड़बड़ ये हो गई कि इससे पहले कि राम लखन रिलीज होती, विच हैपेंड इन जनवरी 1989, नवंबर 88 में तेजाब रिलीज हो गई और माधुरी ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
5: 80s में हिंदी फिल्मों के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या हुई? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सबसे बढ़िया ये चीज हुई कि माधुरी दीक्षित की एंट्री हुई। वैसे तो उनकी डेब्यू फिल्म 1984 में आई थी, लेकिन 1988 में तेजाब के आने से तो सारा मामला ही ढंडलाइन हो गया ना। अच्छा, माधुरी को कब रियलाइज हुआ कि वो ऐसे ओवरनाइट सेंसेशन बन गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन कॉमेडी शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
6: मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए मुझे हीरोइन हीरोइन, तो भाग के आए दोनों। मैंने बोला, अरे मुझे पहचाना? बोलता है, मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने, तो दूसरे को बोलता है, देख देख मैं मोहिनी मोहिनी।
5: तो ये बैड ओवर मोहिनी या बैड ओवर माधुरी वाले टाइम का आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: माधुरी दीक्षित ने पता नहीं कितने गानों में राम जी का नाम लिया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे कि ओ राम जी बड़ा दुख दीना, या मेरा पिया घर आया ओ राम जी, या खलनायक के गाने में भी वो गाती हैं, मैं कैसी राम की गंगा हूँ, मैं तो बस नाम की गंगा हूँ। क्या ये यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए कोई साइन था कि उनकी लाइफ में भी राम नाम का कोई आने वाला है? सुनिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने क्या कहा था।
1: बहुत चिढ़ाया जाता है तो लोग कहते हैं आपने अपने गानों में इतना राम जी राम जी राम जी किया है कि आपको हस्बैंड भी राम ही मिले उनका नाम भी राम ही है, तो इसलिए लोग टीज करते हैं मुझे।
0: भाई हम तो यही कहेंगे वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई वैसे ये जोड़ी किसने बनाई थी, सुनिए माधुरी ने एक बार क्या शेयर किया था।
2: मेरे ब्रदर ने बहुत ही खुफिया किस्म से हमारी मीटिंग करवाई थी, तो मुझे भी पता नहीं था और मुझे लगता नहीं कि उनके भी फैमिली को पता नहीं था। ऐसे ही पार्टी घर में की सबको बुला लिया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई
0: और ये मुलाकात जीवन भर का साथ बन गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। You can catch me on Instagram @rj.charu, rj.charu, इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

तो भैया नाच गाना और खाना किसी भी सेलिब्रेशन के तंबू के लिए ये दो नहीं राइमिंग वर्ड नहीं बोल सकती ज्यादा हो जाएगा, ये दो सपोर्ट तो चाहिए रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और जिस सेलिब्रेशन की आज हम बात करेंगे वो है हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन जो बहुत बड़ी डील होती थी और सबसे बड़ी डील ये कि सिविल ड्रेस पहन के स्कूल जाना होता था। वो ड्रेस जो हमने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके या बहुत सारे टैंट्रम्स थ्रो करके हथियाई होती थी या कई बार नई भी मिलती थी नई ड्रेस, आपको पुरानी शादी फंक्शन त्योहार वाली ड्रेस ही पहना दी जाती थी, लेकिन बड़ी किक मिलती थी ये सोच के कि वो पहन के हम स्कूल जाएंगे क्योंकि स्कूल वालों को बताना होता था कि हम सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं सिविल ड्रेस में भी ठा लगते हैं। और वो सारी प्लानिंग करना कि जो टॉफीज के पैकेट बांटने हैं उनमें कौन कौन सी टॉफीज जाएंगी, पॉपिंस, एक्लेयर्स, मेलेडी, किसमी, मैंगो बाइट, या घर वाले ज्यादा मेहरबान हो जाएं तो रबर शार्पनर पेंसिल भी देते थे। और पूरी क्लास वेट करती थी कि कब कद्दू कटेगा और सब में बटेगा। अच्छा फिर अलग अलग क्लासेस में जाते थे अलग अलग टीचर्स को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि आपके क्रश की क्लास में भी जाएंगे आप, और अगर आपके बर्थडे वाले दिन क्रश एब्सेंट हो जाता था तो बड़ा दिल टूट जाता था कि हाय उसने हमें सिविल ड्रेस में देखा ही नहीं। दोस वर द डेज जब बर्थडे वाले दिन स्कूल में अपनी झांकी होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
4: है। वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: तो मैं आपको, अरे मैडम,
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
4: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: यार
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

और सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी उस गुब्बारे में जिसको फुला के टॉफियां भर के सेंटर में लटकाना होता था और बाद में फोड़ना भी होता था। और याद है वो स्ट्रीमर्स या कलरफुल रिबन्स जिनको दीवार पे सेलो टेप से चिपका के हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था। भाई बड़ी मेहनत का काम होता था, कई बार टेढ़ा मेढ़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा जाता था, कई बार तो त्योहारों के बचे डेकोरेशन पीसेस भी लगा दिए जाते थे। और बर्थडे वेन्यू डेकोरेशन जो यूजुअली घर का ड्रॉइंग रूम होता था उसके साथ साथ अपना डेकोरेशन भी होता था। वो ड्रेस पहनी जाती थी जो हमने बड़े टैंट्रम्स थ्रो करके घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करके नई खरीदी होती थी। कई बार किसी फेस्टिवल ब्याह शादी फंक्शन की पुरानी ड्रेस भी पहना दी जाती थी। मुझे याद है मैंने एक बार अपने बर्थडे पर लहंगा भी पहना था। और सबसे इम्पोर्टेंट होती थी वो कोन शेप वाली हैप्पी बर्थडे लिखी हुई टोपी जिसका पतला सा इलास्टिक कई बार थुड़क करके टूट जाता था तो उसको गांठ बांध के जोड़ लिया जाता था। एक नंबर के जोकर लगते थे उसको पहन के और हमको ऐसा लगता था पता नहीं क्या राजा बाबू लग रहे हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वो चीज है जिसके लिए पूरा झमेला, पूरा सेलिब्रेशन किया जाता था, बर्थडे गिफ्ट्स। बर्थडे में आप गिफ्ट नहीं लाए तो बर्थडे में क्यों आए? मुझे याद है बचपन में ना हमारे पड़ोस में एक बच्चा होता था जो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में लिटरली घर के एंट्रेंस पे खड़ा होता था ये देखने के लिए कि कौन गिफ्ट ला रहा है कौन नहीं ला रहा है। और अगर किसी के हाथ में गिफ्ट नहीं होता था ना तो उसको साफ साफ बोलता था कि पहले गिफ्ट लेके आ तभी खाने को मिलेगा। और याद है बर्थडे में उठा के कुछ भी गिफ्ट कर दिया जाता था, फूलदान, पेन, डायरी, टी सेट, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, मुझे तो एक बार तौलिए भी गिफ्ट मिले थे। और याद है इन गिफ्ट्स को हम यूजुअली काइट पेपर से रैप करते थे, तब इतनी फैंसी पैकिंग थोड़ी ना होती थी, कई बार अखबार में लपेट के भी दे दिए जाते थे, कई बार तो गिफ्ट में शगुन स्टाइल कैश भी दे दिया जाता था। और जिसका बर्थडे होता था वो गिफ्ट्स की वेट करता था, जो बर्थडे पार्टी में आते थे वो रिटर्न गिफ्ट की। और बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था जब कोई छोटा सा रिटर्न गिफ्ट मिलता था, कोई एक्लेयर्स या एक टॉफी। और सबसे बढ़िया चीज, सारे बच्चों के जाने के बाद उन सारे गिफ्ट्स को खोलना। हाय, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की सबसे खूबसूरत चीज ग्रीटिंग कार्ड्स। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आज भी ग्रीटिंग कार्ड दिया जाता है, लेकिन ऐसे मस्त नहीं होता है। उस टाइम पे तो जरूरी होता था, और सबसे खास बात हाथ से बना के दिया जाता था। कई बार बजट होता था तो आप आर्चीज गैलरी वगैरह से भी ग्रीटिंग कार्ड ले आते थे और उसपे कुछ सुंदर सुंदर सा लिख देते थे बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल के लिए। और याद है वो म्यूजिकल ग्रीटिंग कार्ड्स भी आते थे जिनको खोलते से ही टा टा टा टा टा टा बजने लग जाता था। और अक्सर ग्रीटिंग कार्ड को गिफ्ट के ऊपर पेस्ट किया जाता था सेलो टेप से। कई बार ज्यादा प्राइवेट होता था तो अलग से भी दे दिया जाता था। लेकिन वो जो हाथ से बने हुए ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे ना, फिर चाहे उनमें कितनी भी गंदी ड्राइंग की हो, कितनी भी गंदी हैंडराइटिंग हो, उनकी अलग ही बात होती थी। वो ऐसे लगता था कि किसी ने आपके लिए जेन्युइन कोई एफर्ट किया है। हाँ, आज की डेट में जिफ्स, स्टिकर्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या AIC कोई बढ़िया सा मैसेज निकाल के किसी को भेज देना वो भी अच्छा है, पर वो हाथ से बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड, उफ उफ उफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

ग्रोइंग अप ईयर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन की बड़ी भारी जरूरी चीज बर्थडे केक। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और मैं अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेशंस याद करूँ तो शुरुआत में केक घर पे ही बनता था। वो एक गोल मटोल सा ओवन होता था, सी थ्रू टाइप का, जिसमें ऐसे केक दिखता था फूलता हुआ, और उस केक को फिर टूटी फ्रूटी चेरीज या जेम्स जो होती थी उनसे डेकोरेट किया जाता था। उसकी आइसिंग भी घर पे ही बनती थी, वो शुगरी चीनी चीनी सी होती थी। और कैंडल्स, वो नंबर वाली कैंडल्स तो बाद में आई थी और वो महंगी भी आती थी, तो कभी आती थी कभी नहीं आती थी। जो सिंपल पतली वाली कैंडल्स होती थी उन्हीं से काम चला लिया जाता था। कई बार स्पाइरल कैंडल्स भी होती थी। एक बार तो मुझे याद है हमारे घर में किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में केक पर दिवाली की जो बची हुई कैंडल्स थी ना वही लगा दी गई थी और केक काटने के लिए चाकू, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता था किचन का, उसी पे रिबन बांध दिया जाता था। फिर बाद में बाजार वाले केक्स आ गए, उसमें भी लिमिटेड फ्लेवर्स होते थे, चॉकलेट, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट। केक यूज्ड टू बी अ सच अ बिग डील। केक कटिंग कितना इम्पोर्टेंट इवेंट वैसे आज भी होता है, और कितना जरूरी हो जाता था कि केक कटिंग से पहले बर्थडे पार्टी में पहुंचना है, नहीं तो फिर केक खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, गिफ्ट के पैसे कैसे वसूल होंगे। ग्रोइंग अप ईयर्स का बर्थडे सेलिब्रेशन, हाय सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening. My bank support.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
3: बात है सर, आप तो सर पूरा बता दिए.
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है क्या?
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे?
3: अब तो फंस गए सर.
2: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
2: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
7: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

भी कहे

ग्रोइंग अप ईयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता था फोटोज क्लिक करना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ग्रोइंग अप ईयर्स में ये अलग एक्सपीरियंस इसलिए भी होता था क्योंकि फोटोज खींचने के लिए एक अलग कैमरा होता था जिसमें

खैर यूजुअली ये फोटोज घर का कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो क्लिक करता था और फिर वेट होता था कि ये रील्स को कब फोटोज की दुकान पे ले जाया जाएगा, इन्हें डेवलप कराया जाएगा, उन्हें एल्बम में लगाया जाएगा और जब तक अगला बर्थडे नहीं आएगा उसी एल्बम को बार बार देखा जाएगा। हाय, वो डेज जब फोटोज एक्चुअली मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, यादों को सहेज के रखने के लिए क्लिक की जाती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

गोल माल, चकोर माल, तिकोना माल, हर तरह का माल फिट हो जाता था वो छोटी सी प्लेट में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ग्रोइंग अप इयर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन की हम बातें कर रहे हैं, और उस प्लेट की बात कर रही हूँ मैं जिसमें स्नैक्स सर्व किए जाते थे। पूरी दुनिया सिमट जाती थी उस प्लेट में। समोसा, गुलाब जामुन का रस समोसे के नीचे घुसा हुआ, समोसे की चटनी गुलाब जामुन से लिपटी हुई, केक या पेस्ट्री की क्रीम में रसे मिसे आलू चिप्स। और ऐसा भी होता था कि खा हम अपनी प्लेट से रहे होते थे लेकिन नजर दूसरे की प्लेट पे होती थी कि कहीं कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो हमारी प्लेट में नहीं आई उसकी प्लेट में है। और अगर ऐसी कोई आइटम होती भी थी तो ही करते हुए आंटी के पास जाते थे और बोलते थे कि भाई बाकी सब तो मिल गया, एक वो नहीं हमको मिला, वो भी प्लीज दे दो। और कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोला, लाइम, ऑरेंज ये फ्लेवर्स तो होते थे, कई बार रसना रूह अफजा भी टिका दिया जाता था, चाय कॉफी भी पिलाई जाती थी कई बार। हाय, उस कागज की प्लेट के आइटम्स का जो स्वाद होता था ना, वो स्वाद लाइफ में कहीं और है नहीं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. Burga, burga. Burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं।
3: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा
3: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
3: 4 लीटर में आप, मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा जो
3: सोडा, हाँ खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: कोई बंदा पेट्रोल पेट्रोल के तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Check Energy.
1: Iskabana, puskabana, sakabana, rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Milchi burka.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स।
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब हम ओम शांति कहते हैं, क्या वो शांति सिर्फ हमारे लिए होती है या पूरी दुनिया के लिए? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
3: ओम शांति टू यू टू। मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि ओम शांति क्यों बोलते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कई जगह पे इंटरव्यूज देखे आपके, मैंने सिस्टर शिवानी के देखे, सब जगह ओम और शांति ये दो शब्दों को मिला के जब बोलते हैं तो इनका क्या तात्पर्य होता है?
4: ओम शांति एक ग्रीटिंग है जिसका मतलब है ओम माना आई एम,
3: ठीक है, मैं हूँ,
4: और शांति माना पीस, आई एम पीस, आई एम पीसफुल सोल।
3: अरे वाह, क्या बात है।
4: तो एक ये जस्ट एक जेंटल रिमाइंडर होता है कि मैं भी एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम पीस, एंड द अदर पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं वो भी ओरिजिनली एक पीसफुल सोल है। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी।
3: वाह, क्या बात।
4: पीस का वाइब्रेशन हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम किसी को मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कहते हैं तो भाव क्या रहता है?
3: हाँ,
4: आपके मॉर्निंग बहुत अच्छे रहे,
3: बहुत शुभ रहे।
4: इसी प्रकार से ओम शांति माना जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि आप भी पीस हैं और मैं भी एक पीसफुल एनर्जी हूँ।
3: वाह, क्या खूबसूरत बात कही सुबह सुबह आपने।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स ऑल.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: बनीता पारिख जी अहमदाबाद से लिखती हैं कि मुझे एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ट्रिगर जल्दी होती है और नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आती है, क्या करूं?
3: एंगर इश्यूज क्या है? कोई भी चीज आप बार बार करते हैं तो बहुत नेचुरल नेचर हो जाती है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, मना वो बहुत पहले आप बड़ी बात पे करते थे, फिर आप जैसी कोई चीज आप करते रहे। हमने वो एग्जांपल एक बार पहले भी लिया था कि जापान में एक बार रिसर्च हुई थी, तो एक कंपनी थी जहाँ पर उनको बहुत गुस्सा आता था जो काम करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि बेसमेंट में ऐसे पैडेड वॉल्स बनाई, वहां पर बेसबॉल बैट्स रखे और कहा कि किसी को भी गुस्सा आए तो कस्टमर पे नहीं निकालना, जो एम्प्लॉयज थे, आप नीचे जाओ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, बैट से आप वॉल को हिट करो, फिर ऊपर आकर के कस्टमर को डील करो। एंड दे डिड दैट रिसर्च फॉर फ्यू मंथ्स। अब रिजल्ट में क्या आया, मतलब उसमें तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनका गुस्सा बढ़ गया या कम हो गया या सेम रहा। तो जो रिजल्ट, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?
2: मतलब होना चाहिए कि कम।
3: तीन चीजें हो सकती हैं, या तो उनका गुस्सा बढ़ गया या कम हो गया या सेम रहा। तो जो रिजल्ट, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?
2: मतलब होना चाहिए कि कम हो गया, क्योंकि

0: मैं अंदर आया था, मैंने आपको नमस्ते किया, आपने मुझे नमस्ते नहीं किया, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। उसको पता भी नहीं होगा, उनका इंटेंट भी नहीं होगा, लेकिन आपका मन कहेगा आपने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इट कुड बी एज स्मॉल एज दैट। इसीलिए आप अभी शिफ्ट लाना पड़ेगा ना। एंगर से शिफ्ट होना क्या है कि अभी हम छोटे छोटे ट्रिगर में ट्राई करना शुरू करें। आज से अपने को बोलें कि अभी कोई बात होगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। आप अब 10 दिन अगर 10 बार दिन में करते हैं, 1 बार होगा, 9 बार नहीं होगा। बट वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। 9 बार आप रिएक्ट करेंगे, 1 बार आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, किसी ने नहीं भी किया तो आपने न गलत सोचा। एंगर बिगिंस इन द माइंड, ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन मन में डिस्टर्ब होना, वहीं से एंगर शुरू हो जाता है। एंगर के बहुत रूप है, इरिटेट होना, रेज, रूठना, बात नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। हम टीम सारा काम कर रहे हैं, अब सडनली मेरे सर में दर्द है, मुझे कोई जरूरी काम है, आप है कुछ नहीं, लेकिन आप सहयोग नहीं देना चाहते, विड्रॉ कर लेना, वो सब गुस्से का ही रूप है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि अंदर पे वो गुस्सा है। गुस्सा फिर नफरत में बदल जाता है, नफरत फिर रिवेंज में बदल जाती है। तो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। दिन में 10 बार आता है, 1 बार भी नहीं आपने नहीं किया, पैट योर सेल्फ कि कम से कम 1 बार तो नहीं किया। जस्ट लाइक व्हेन यू लीव स्मोकिंग,
1: एक कम हुआ, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे धीरे धीरे, फिर कल नहीं किया, अच्छा स्मॉल प्रोसेस।
0: फिर भी स्मोकिंग में शायद आप एक झटके से भी छोड़ पाएंगे, संस्कार ऑन ऑफ का बटन नहीं होता।
1: हाँ, समय लगेगा,
0: थोड़ा समय लगता है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो एक प्रैक्टिस है। कोई चीज प्रैक्टिस है तो डिफिकल्ट नहीं होती। ए लिखना है, ए लिखना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से वो चीज बहुत इजी हो जाती है। ऐसे गुस्सा छोड़ना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग नहीं करना है, इसका पूरा अंदर में डिटरमिन्ड थॉट होना चाहिए। सेकंड, अगले दिन से जब आप शुरू करेंगे, हो सकता है कि आप 10 बार में से 9 बार करें, 1 बार ना करें। ग्रेजुअली एक ऐसा दिन भी आएगा, 1 बार किया, 9 बार नहीं किया, हैव कंपैशन, हैव फेथ, बी डिटरमिन्ड, चला जाएगा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब मन भटक जाता है, क्या ध्यान और मेडिटेशन उस कमी को पूरा कर सकते हैं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक हमारे टीम में एक इंसान है, उनका नाम है गौरव ठाकुर। वो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझे पिछली बार पूछा था, मैंने सोचा आपसे पूछूं। वो कह रहे हैं कि भाई जब आप फाइनेंशियली वीक हैं या ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, तबाह हो गए हैं, तब स्पिरिचुअलिटी कैसे प्रैक्टिस की जाए?
4: सी, जब कोई भी विघ्न होता है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप लेवल पर है, आप अगर टूटे हुए हैं तो टूटे हुए को हम क्या कह रहे हैं? मन टूटा हुआ है। अब किसी भी चीज में अगर सफल होना है तो पहले मन शक्तिशाली होना जरूरी है।
3: जी,
4: आई अंडरस्टैंड जब लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की बातें हम तब करें जब कम से कम रोटी कपड़ा मकान हो।
3: बिल्कुल,
4: लेकिन वो शरीर की जरूरत है।
3: हाँ।
4: और शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी आपका मन तो शक्तिशाली होना चाहिए ना।
3: बिल्कुल।
4: आज आपको काम करना है, किसी से बात करना है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, कोई डिसीजन लेना है, हार्डवर्क करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको डिसिप्लिन्ड होना है, डेडिकेटेड होना है, ये सब कहाँ से आएगा? ये मन की शक्ति है।
3: जी।
4: जब मन टूट जाता है फिर लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफल नहीं होता।
3: हाँ।
4: मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी बार बार फेल होता हूँ।
3: सही बात।
4: ये निशानी है कि अंदर से कमजोर है।
3: जी।
4: जब मन शक्तिशाली होता है तो कई विघ्न आते हैं। फाइनेंशियली अगर आप ब्रोकन है भी और अगर ऐसा कोई विघ्न आया भी है, पहले तो हमेशा जो एक चीज अगर हम उसको याद रखें ना, जीवन में जब भी कोई बात आती है उस तूफान को तोहफा बनाते हैं।
3: उस तूफान को तोहफा बनाए।
4: हाँ, ये लाइन बहुत अंदर पक्की होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो है कहते हैं कि ये जो सारा है इसमें कुछ मंगल विधान है, कल्याणकारी है। ये अंदर बहुत पक्का होना चाहिए, इसमें कुछ बेनिफिट समाया है। वो बेनिफिट कई बार इतना ही होता है, आप हम सब इस चीज के अनुभवी हैं कि जब भी कोई चैलेंज आता है उस समय डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पार करने के बाद हमें हमेशा लगता है कि इसने हमें और
3: शक्तिशाली बनाया,
4: एक्सपीरियंस्ड बनाया, हमारी हिम्मत बढ़ी, हमारी शक्ति बढ़ी। बिना विघ्न के शक्ति नहीं बढ़ती है। बिना चैलेंज के जो इनर पावर्स हैं वो ग्रो नहीं होती है। जैसे अगर आपको कोई मूर्ति बनानी है, आजकल भी देखें ना, अभी गणपति के दिन है, कोई भी मूर्ति आप बनाते हैं देवी देवताओं के भी, ठोके बिना नहीं बनती है। उसको ठोकना पड़ता है फिर ही वो मूर्ति तैयार होती है। ऐसे हम लोग भी तभी तैयार होते हैं, ये भी तो मूर्ति है ना एक प्रकार से। जब ठोक माना कोई विघ्न है, कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पेपर है, वो हमारी इनर पावर को डेवलप करता है, हम और एम्पावर होते हैं। तो पहले तो एक्सेप्ट करें, अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, तो किसी भी विघ्न का हम सामना कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: अब अमित लिखते हैं कि मैं लीफ सोसाइटी पुणे से हूँ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार हूँ और इस फील्ड में मेंटोर भी हूँ। मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लेके आए। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने ही फैमिली मेंबर्स पर। गुस्सा आने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब भी फील करता हूँ, लेकिन उस मोमेंट पर अपने गुस्से को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। उन्होंने दो इंसिडेंट भी लिखे हैं। कहते हैं कि जैसे अगर खाना टाइम पर नहीं बना हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि मुझे ऑफिस में लेट हो रहा होता है। या दूसरा इंसिडेंट है, कभी कभी अगर मैं अपनी वाइफ के साथ मुझे बाहर जाना होता है और वो तैयार होने में बहुत देर कर देती है तो भी मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे खुद पर बुरा लगता है कि मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करता हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। क्या आप प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हैं इस इशू को समझने में और ठीक करने में? तो सबसे पहले तो मैं अमित जी, इससे पहले कि सिस्टर बात करें, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि आपने रिकग्नाइज किया कि आपके पास एक ये प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें। Over to you, sister.
3: अवेयरनेस बहुत जरूरी है, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन, कि जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर कर रहे हैं, फिर सेकंड चीज परिवार पर कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो ये जो होता है ना कि परिवार पर नहीं करना, स्टूडेंट पे कर सकते हैं, ये काम नहीं करता। अगर आपको उसको खत्म करना है तो टोटल खत्म करना पड़ेगा। अंश रह गया तो वंश बन जाएगा।
2: बिल्कुल,
3: जो हम कई बार कहते हैं अंश भी रह गया। आज आप देखें कई बार जो कैंसर आदि के पेशेंट्स होते हैं, वो कैंसर वापस रिलैप्स नहीं हो उसके लिए कितना कीमो और रेडिएशन लेते हैं, क्योंकि अंश भी नहीं रहना चाहिए।
2: बिल्कुल,
3: एक सेल भी रह गया तो वो उसके वापस आने के चांसेस हैं। इसमें भी ऐसे ही है।
2: क्या बात।
3: काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भी फर्स्ट थिंग नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं चाहिए। दूसरा तरीका निकालेंगे काम कराने का, असर्टिव होंगे, कामली कराएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं चाहिए तरीका। पहले ये बहुत फर्म होना चाहिए। सेकंड चीज है, जैसे वो आने लगता है ना तो उसी समय वो थॉट आता है। आप पहले थॉट को पकड़ने की कोशिश करें। हमारे साथ क्या होता है, जब वो फुल ब्लोन हो जाता है
2: उसके बाद हम
3: फिर तो अब प्रेशर कुकर है, अभी वो पूरा भर गया, वो तो फिर फटता ही है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, वो फिर एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट पहले थॉट से होगा कि ये, और वो होता हमेशा थॉट यही है क्योंकि गुस्से का जो कारण है मेरे अनुसार होना चाहिए। तो बार बार हमें अपने को कहना पड़ेगा, सब कुछ मेरे अनुसार नहीं
2: हो सकता।
3: इस लाइन को रटना पड़ेगा, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डांस टू माई ट्यून्स। आई डोंट नो, समवेयर वी बिलीव कि मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, तो मेरे अनुसार होना चाहिए। फिर हम अंदर से प्रेशर भी डालते हैं, उनको सफोकेट भी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको जो करना है वो करे। आप आराम से कह दें, लेकिन आप डिस्टर्ब वो नहीं आपको कर रहे हैं,
2: आप हो रहे हैं,
3: आप गलत सोच करके हो रहे हैं। आप शायद ये चेंज नहीं कर सकते कि वो जल्दी तैयार हो जाए। सच में
2: बिल्कुल नहीं।
3: देयर इज नो कंप्लीट श्योरिटी अबाउट इट। आप 20 बार भी बोलेंगे तो भी जरूरी नहीं है वो करे कि नहीं करे। हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है वो ना चेंज हो। कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो आपको तकलीफ दे रही है, उनको तकलीफ नहीं देती है।
2: बिल्कुल,
3: अगर वो उनको तकलीफ नहीं देती तो वो क्यों चेंज करेंगे? लेकिन आप अपने को तो चेंज कर सकते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन तो चेंज कर सकते हैं ना। इट इज ओके।
2: उल्टा मुझे लगता है कि कभी कभी प्रेशर में आदमी और जैसे होता है ना कि जल्दी तैयार हो तो चार चीजें भूल जाता है, तो और ज्यादा समय लगता है तैयार होने में। तो आई थिंक इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। गुस्सा इस बात में होने की कोई जरूरत ही नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब दिल का हिसाब किताब बिगड़ जाए तो क्या मन के पन्ने भी उलट जाते हैं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपने जब कहा कि भाई ठोकर तो जब लगेगी इंसान को, उसके बाद एक्सेप्ट करके अपने मन को स्थिर करें, शांत करें, उसके बाद आगे बढ़ें, जो नॉर्मल सवाल आते हैं, बात हमको समझ में आ गई। लेकिन जब इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, बाकी सारे क्राइसिस में ना आदमी धीरे धीरे संभल जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको समझ में आता है कि रिलेशनशिप अगर हील होना है, कहीं पे भी और कुछ हीलिंग होती है, वो धीरे धीरे हो जाती है। फाइनेंशियल इंसान के जब प्रॉब्लम्स आती है ना, वो बहुत टाइम लगती है और उसमें वो पूरा बिखर जाता है। क्योंकि अगर आपके लेनदार घर आने लग गए, बैंक के फोन आने लग गए, कभी कभी बहुत और भी तरीके हैं पैसे निकालवाने के, गुंडे भी घर आ जाते हैं, उस समय मेंटल जो आपके आपके अंदर गुजर रहा होता है वो बहुत पेनफुल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बिकॉज बाहरी स्थिति आपकी ऐसी हो रही होती है जो अंदर एक कौतूहल पैदा करती है।
4: आपको लगता है कि फाइनेंशियल पेपर सबसे डिफिकल्ट है, पर एक्चुअली में चार प्रकार के जो विघ्न आते हैं किसी के सामने, उसमें सबसे इजी धन का माना जाता है।
3: अच्छा,
4: पहला जो इजी हमें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन धन फिर भी हमने कमाया है, कोई प्रॉब्लम है भी फिर कमा सकते हैं
3: जी।
4: धन सेकंड लेवल का जो चैलेंजिंग है रिश्ते
3: जी,
4: जन जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, डिफिकल्ट है। आपके घर में कोई रहता है, निंदा करता है, अपमान करता है, टोंट करता है, या कोई भी और जो है। थर्ड लेवल
3: तन
4: बहुत डिफिकल्ट है, आप किनारा नहीं कर सकते। आप अगर किसी को तन का पेपर आ जाता है, चाहे वो हिसाब किताब है, खुद का ही हम कहें कार्मिक अकाउंट है, आप भाग तो नहीं सकते ना।
3: सही बात,
4: तन के पेपर एक बहुत सफरिंग होती है जिससे आप नहीं एस्केप कर सकते।
3: हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है,
4: हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सफरिंग क्या करेंगे आप? आपको वो चीज भोगनी ही पड़ेगी, आप उससे भाग नहीं सकते। कई बार आप देखे कोई कहेगा भी मेरा शरीर छूट जाए, बस बहुत हो गया, मैं सहन नहीं कर सकता, पर आपको सहन
3: करना पड़ेगा,
4: करना ही पड़ेगा। जब तक वो समय नहीं है शरीर छोड़ने का, आप कितनी भी इच्छा करते रहें, आश रखते रहें, वो नहीं होता। मना आपको वो चीज सहन करना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा टफ पेपर होता है
3: मन
4: का। जिनको कोई मानसिक बीमारी है, कोई भी प्रकार का, जो ये हम कहते हैं ना, सुनने में तो लगता है कि ये ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन जो लोग कहते हैं किसी चीज में मन नहीं लगता, उठने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, सोते हैं तो उठा नहीं जाता, उठे हैं तो नींद नहीं आती, मन देयर इज टू मच नेगेटिविटी। आप देखो वो कितना सफर कर रहे हैं, पल पल सफर कर रहे हैं, कितना उनको सहन करना पड़ता है, कहाँ भागेंगे अपने मन से। तो इसलिए पेपर है, फाइनेंशियल पेपर है, पर उसको इतना बड़ा नहीं बनाएं। जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। होता क्या है, जब कोई धन का पेपर आता है और हमारे पास ताकत नहीं होती उसको फेस करने की, उसका इम्पैक्ट मन पर आने लगता है।
3: सही बात है,
4: मन पर आप सोचने लगेंगे अब क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हम कहते हैं ये सोचना नेचुरल है, लेकिन नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ऑप्शन है, चॉइस है। अगर हम ऐसे ही सोचते जाएंगे, नेगेटिव सोचते जाएंगे, ओवरथिंक करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाना शुरू कर देंगे। वो जो डिप्रेशन है वो हमने क्रिएट किया है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: catching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया सिस्टर। गुड मॉर्निंग। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया। कुछ मैंने भी गलत बोल दिया, कुछ उसने भी गलत बोल दिया। वो हर्ट हो गई है और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। किसी और के फोन से किसी तरह उससे बात हुई तो बोलती है कि 1 साल वेट करो। अभी हम दोनों अलग रह रहे हैं। मेरा घर टूटने से मैं बचा सकूं, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्लीज हेल्प मी।
3: इसीलिए हम कई बार कहते हैं, अगर गुस्सा आ भी जाए ना, बोलना नहीं चाहिए। बोलने में क्या होता है, आपने फिर रियलाइज किया, आपने अपोलोजाइज भी कर लिया। सामने वाला जब बहुत कमजोर होता है तो उसको पकड़ लेता है, रिपीट करता रहता है, हर्ट क्रिएट कर लेता है, ब्लेम आपको करता है। एक्चुअली उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा, फिर सॉरी भी कह दिया, तो बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक उसकी नहीं है। पर अगर कोई इमोशनली वीक है तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। वही चीज रिपीट करता रहता है और जख्म बना लेता है। अब उन्होंने जख्म बना लिया, आपने सॉरी भी कह दिया। अब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनके जख्म, हर जख्म हील होता ही है। कोई समझ से हील होता है, कोई समय से हील होता है।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया। कोई नॉलेज से, कोई टाइम से,
3: होना तो समझ से चाहिए। ये क्या बात हुई कि 1 साल वेट करो? जो चीज 1 साल में ठीक करनी है वो 1 सेकंड में भी ठीक हो सकती है। 1 साल में तो वो जख्म और गहरा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो उनके ऊपर है। समझ तो क्या कहती है, मेरी साड़ी पे दाग लगा, मैं 1 साल बाद थोड़ी ना धोऊंगी। दाग लगा है ना, तो हम तो चाहे भी कप रख करके कहेंगे पहले धोए फिर पियेंगे, नहीं तो ये गहरा हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
3: तो समझदार तो क्या करेगा, अच्छा हो गया ना, फुल स्टॉप। मैंने कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया, फुल स्टॉप। बात करना शुरू करो, गांठ को तोड़ करके फेंको। लेकिन अगर समझ नहीं है तो समय हीलिंग करता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर कहते हैं। टाइम हीलिंग कैसे करता है, वो चीज मर्ज होने लग जाती है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सीन्स लाइफ की होती है, तो वो पीछे वाली का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं उनके लिए। आप उनको अच्छा वाइब्रेशन भेज सकते हैं। आप परमात्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आप उनको सेंड कर सकते हैं, जो उनकी हीलिंग फास्ट करेगा। तो आप डेडिकेटेड टाइम फिक्स करें, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। आप मेडिटेशन में बैठे, उस मेडिटेशन में आप बोले कि मैंने आपको दुख दिया, मेरा भाव नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं परमात्मा से हीलिंग एनर्जी लेकर आपको भेजता हूँ, क्योंकि मेरी भावना है कि आप खुश रहे।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
3: मेरे लिए आपकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बस अभी इतना ही चाहता हूँ कि आप खुश रहे, ये मेरी अंदर की शुभ भावना है। मॉर्निंग इवनिंग आप ये करते जाए, आपका वाइब्रेशन उनको हील करेगा। और वो हीलिंग हो जाएगी तो वो जितना समय लगना उससे बहुत कम समय में वो ठीक हो जाएंगे।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs and feel isolated and helpless? Reach out to SK

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Stability का formula कैसे हमारे मन के equation को solve करता है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आप कह रहे हैं कि एक पेपर में फेल होने से बाकी पेपर भी खराब हो जाते हैं?
4: 100% हमें लगता क्या है, वो बाहर की एक सिचुएशन बाकी सबका कारण है,
3: लेकिन ऐसा नहीं है।
4: नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर से एक बात आती है, एक परिस्थिति बाहर से आई, एक चैलेंज आई, आप अगर स्टेबल रह करके उसको पार करते तो ना हेल्थ की प्रॉब्लम होती, ना मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती, रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते। पर एक को फेस नहीं कर पाते तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं।
3: बहुत बढ़िया।
4: बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती नहीं है, ये बहुत जरूरी है। कई बार कहने में क्या आता है, मेरे घर में ना एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी हुई है।
3: हाँ, कई बार
4: एक के बाद एक आती जा रही है, पता नहीं किसी ने हमारे पर नजर लगा दी है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया है। ऐसा नहीं होता, एक को फेस करने की ताकत नहीं थी तो हमने और अनेक क्रिएट कर लिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: मोहन पाटिल पूछ रहे हैं कि कोई अच्छा काम करने जाता हूं तो सबसे पहले नेगेटिव विचार मन में प्रभाव डालते हैं। इन नेगेटिव विचार को मैं कैसे नष्ट कर सकता हूं?
3: ट्रांसफॉर्म करते हैं उनको। नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है, एनवायरनमेंट भी कई बार उसमें कंट्रीब्यूट करता है। आप कुछ नया करने जाते हैं, दो चार कह देते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जो कर रहे हो वही करते रहो, क्या जरूरत है। तो अपने साथ बैठ करके कहें नहीं, मुझे ये करना है, बहुत अच्छा होगा, होना ही है। कोई चैलेंज भी आ सकता है पर उसको ओवरकम करेंगे। फेलियर भी हो सकता है पर मन में कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा। मिस्टेक भी हो सकती है तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कौन से सफल लोग हैं जिन्होंने भूले नहीं करी या मिस्टेक नहीं करी। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, वो बहुत जरूरी है, फिर आप उस चीज को कर लेंगे।
2: तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सामने से अगर काला भी आ रहा है तो आप सफेद फेंकते रहिए।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is मिर्ची मॉर्निंग्स। और 5 मिनट और वाली गैंग जो है उसको ऑफिशियली उठाने आ चुकी हूँ मैं। यहाँ पर चाय जो है इमेजिनरी नहीं है, बिल्कुल गर्मा गर्म है, जस्ट लाइक द गॉसिप कमिंग अप लेटर इन द शो। एंड ऑनेस्टली यार, देसी एक्सपैट लाइफ जो है ना, वो क्या लाइफ होती है। सुबह अमेरिका का वेदर कन्फ्यूज करता है और दोपहर में मम्मी के कॉल्स कन्फ्यूज करते हैं और शाम आते आते खाने में क्या खाना है ये कन्फ्यूज करता है। बट डोंट यू वरी, टूडे आई एम सर्विंग फुल ऑन गुड वाइब्स, बॉलीवुड बीट्स, स्पाइसी कॉन्वर्सेशन एंड ढेर सारी मिर्ची की मस्ती। अगले कुछ घंटों तक तुम्हारा दिन तो सेट हो ही गया है और मॉर्निंग्स अगर अच्छी जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बिलाल बड़ा बच्चे मुझे फॉलो कर लो, मेरा नाम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल बैक टू बैक मिर्ची दैट बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Cabana!
1: ¡Murga, murga! ¡La virgo a la murga!
2: ¡Mirchi, murga!
3: ¿Aló? ¿Aló?
4: Sir, very good evening, man. Bank to bottom.
3: ¿Bolia?
4: Sir, I'm so sorry, sir, but... सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
4: बात है? सर आप तो सर पूरा बता रहे
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो,
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: आप तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो,
4: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, से बोल रहा. तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
13: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है.
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड यू वाइबिंग विथ मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की डेट यानी कि 18th of May हिस्ट्री में क्या हुआ था, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले 1804 नेपोलियन बोनापार्टे बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस। 1912 में इंडिया रिलीज श्री पंडालिक, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन मोशन पिक्चर्स इन मुंबई। फास्ट फॉरवर्ड टू 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कॉल्ड स्माइलिंग बुद्धा इन पोखरण राजस्थान। Then came 1980, Mount St. Helens erupted in Washington, US. 2009 May, Sri Lanka civil war officially came to an end after decades. It was a huge historical turning point for the region. तो एक ही दिन में कितना सारा ड्रामा, एम्बिशन एंड साइंस ने सर्वाइव किया था। और आज के दिन हमारी लाइफ चॉइसेस तो सर्वाइव कर ही सकती है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। अब जाकर देखो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. You're hanging with Priscilla on Mirchi Mornings. Aur ye suno, journalist Saurabh Dwivedi has officially entered his main character era and made his acting debut in Netflix's Kartavya alongside Saif Ali Khan. Lekin social media ne kya kya? Full savage mode on kar diya hai. People are trolling his performance, saying his dialogue delivery sounded less like a villain and more like someone's reading the 9 PM bulletin. Yani ki main villain kam and namaskar, aaj ke mukhya samachar. Zyada lag rahe the wo. Ek ex-user ne to ye tak likh diya hai ki from Ambarish Puri to this, what a downgrade. Oof, internet really wakes up every day and chooses violence over everything else. लेकिन honestly, switching careers publicly takes guts. आजकल तो यार लोग LinkedIn bio change करने से पहले भी 4-5 बार सोच लेते हैं. And somewhere this is like peak desi energy, right? Engineer becomes DJ, doctor becomes food blocker, journalist becomes actor, and politicians are doing stand-up comedy. एंड मम्मी फिर भी कहती है बेटा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर दिया होता ना तो आज कहीं और ही होते. ऑल्सो कैन वी अप्रिशिएट सैफ अली खान जिन्हें इनकी एक्टिंग झेलनी पड़ी हो. बट इस पर से एक सवाल आया मेरे दिमाग में, व्हाट डू यू थिंक, पीपल शुड बी काइंडर ऑनलाइन या फिर अगर थोड़ा बहुत मजाक में ट्रोल कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. स्लाइड इन टू माई DMs ऑन इंस्टा एंड एक्स, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alrighty then, this is your girl Priscilla with you. Sun rahe the Mirchi Mornings. Aur ab weather ka hal chal. So here's the forecast before you confidently leave home. Right now the temperature is sitting at a cool 68 degrees Fahrenheit with mostly cloudy skies. Lekin plot twist hai ki 69 degrees feel hone wala hai temperature. Subah ke 7 baje to kafi sunny mahol tha. Lekin if you've been waiting to be the main character like Bollywood movies who walks out of the house with a song, aaj is your डे. आज के दिन का हर एक मोमेंट बड़ा ही अच्छा जाने वाला है. एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट द टेम्परेचर रेंज. आज जाने वाला है 66 डिग्री फारेनहाइट से लेकर हाई अप टू 94 डिग्री फारेनहाइट. और बरसात का सीन ये है कि 0 मिलीमीटर्स रेन इज एक्सपेक्टेड जस्ट लाइक लास्ट 24 आवर्स. अगले 24 आवर्स में भी कोई बरसात नहीं होने वाली है. एंड कम्पेयर टू यस्टरडे, टुडे इज अ बिट हॉटर. यस्टरडे पीक्ड एट 89 डिग्री फारेनहाइट एंड टुडे इज फ्लेक्सिंग एट 94 डिग्री फारेनहाइट. तो समर रियल entered the chat uninvited. So, इसी बात पर लेयर के प्लेयर बनो और बहुत सारा पानी पियो. कीप योरसेल्फ्स हाइड्रेटेड और साथ में मिर्चीदार वाइब्स कैरी करो जस्ट लाइक मी. बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और अभी फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे Mirchi Mornings. And now it's time to know what's happening around the world.
2: Mirchi, our country.
1: सबसे पहले एन इंडियन रेस्टोरेंट ओनर नेम्ड मनीष कुमार हु हैज लिव्ड इन जापान फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स ब्रोक डाउन आफ्टर हिज बिजनेस वीजा रिन्यूअल गॉट रिजेक्टेड अंडर स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन रूल्स ही नाउ मे हैव टू शट द रेस्टोरेंट हीज रन फॉर 18 इयर्स नंबर टू पर हार्ट ब्रेकिंग अपडेट कमिंग इन फ्रॉम इंडिया मैसेजेस फ्रॉम ट्विशा शर्मा अ नोएडा वुमन फाउंड डेड जस्ट मंथ्स आफ्टर मैरिज हैव सर्फेस्ड व्हेन शी रिपोर्टेडली टोल्ड अ फ्रेंड आई एम ट्रैप्ड हर हस्बैंड एंड मदर in-law have reportedly been booked as investigations continue. And number three per cricket say CSK and RR both have the same wins, same points and even the same NRR. But CSK is still above RR on the points table because apparently their NRR, that's net run rate, is microscopically better beyond three decimal places. And that's it for Mirchi Awaka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhe connect karo Insta or X per mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp per mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो. मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया रेडियो मिर्ची पे. आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Namaste Islam and Sat Sri Akal bhaiyo aur behno. I'm Sujit Singh running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singhforcongress.org and get engaged.
9: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
8: Read for by Sujit Singh for Congress.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
14: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
13: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab, mirchi kha.
19: Radio Mirchi, it's hot.

0: 9:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आर के ज्वेल्स. आर के ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आर के ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: रेडियो मिर्ची
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my birthday babies. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में of course on Mirchi Mornings. और यहाँ पर exclusively मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आज तुम अपना बर्थडे किसके साथ मना रहे हो. लेकिन उसके पहले may your bank balance grow faster than your screen time. एंड आज तुम्हें इरिटेटिंग रिलेटिव्स के फोन्स आए ही ना, वो भूल जाए तुम्हारा बर्थडे. तो सबसे पहले आज तुम्हारे साथ है कॉमेडी क्वीन टीना फे, एंड ऑल्सो यू शेयर इट विद जॉर्ज लूकस, द क्रिएटर ऑफ स्टार वॉर्स, एंड सिंगर जैक जॉनसन, एंड इंटरनेशनल स्टार चाओ यून फैट. So if it's your big day today, celebrate loudly, eat the cake, forget about the calories, post your selfies and send me shout outs on your birthday. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MirchiPris, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033 64 7244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड इट्स टाइम फॉर सोना एंड चांदी का रेट अपडेट ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स.
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,700 पर ट्राउंस, $4,700 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड. राजोस की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें. कैसे? आइए राजोस के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्चीदार गानों की बारी है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे.
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. You're back with Priscilla on Mirchi Mornings, and it's time for your favorite segment of the show. Yahan par hum bata karte hain around the world kya chal raha hai. सबसे पहले टू यूएस नेवी EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट्स कोलाइडेड मिड एयर ड्यूरिंग द गन फाइटर स्काइज एयर शो इन आइडाहो. वीडियोस शोड द जेट्स कोलाइडिंग एंड एक्सप्लोडिंग आफ्टर क्रैशिंग टू द ग्राउंड, बट थैंकफुली ऑल फोर क्रू मेंबर्स सेफली इजेक्टेड. नंबर टू पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शेयर्ड AI जनरेटेड इमेजेस शोइंग हिमसेल्फ वॉकिंग विद अ कैप्चर्ड एलियन एंड अनदर वन प्रेसिंग अ जायंट रेड बटन इन स्पेस विद स्पेस फोर्स रिटन ऑन इट. एंड फाइनली इंडियन PM Narendra Modi visited the Afsluitdijk Dam in the Netherlands. A massive water management project, experts say, could inspire Gujarat's proposed Kalpasar project. The project is being studied for ideas around freshwater storage and large-scale dam systems. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 6472 44. Stay tuned and stay hot.

0: Pepe Mirci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirci, murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: वाह मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
10: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, सुबह उठ के बैंक बैलेंस चेक कर लिया है तो आप क्यों ना पता करें राशिफल क्या कहता है. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड लेट्स हेड टू राशि जोन नंबर वन.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: It is Yane Mesh Rashi. Money moves looking strong today. New ideas can actually bring extra cash your way. Side hustle ka keeda active ho raha hai. Lucky color for you is electric green. Lucky number is 19. Taurus yani ki Vrushabh Rashi. Big boss energy today, babe. Whether social life ho ya work life ho, people are noticing you. Basically, LinkedIn aura, Bollywood ka confidence. Lucky color is orange. Lucky number is 4. Gemini yani Mithun Rashi. Venus is shifting vibes, but the sun is coming in hot. Translation, star doom scrolling and go out there. Attention is waiting for you. Lucky color is lemon yellow. Lucky number is 27. Cancer yani Kark Rashi. Soft heart, strong intuition today. Relationships improve when you stop overthinking every K in texts. Lucky color for you is off-white. Lucky number is 11. Leo yani ki Sinha Rashi. Career stars are shining brighter than Times Square tonight. People want your ideas, your vibe and your honesty. साथ साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस फ्री में मिलता है. लकी कलर इज क्रिम्सन रेड. लकी नंबर इज नंबर 1. वर्गो यानी कन्या राशि. योर ब्रेन इज स्पॉटिंग डिटेल्स एवरीवन एल्स मिसेस टुडे. बेसिकली एफबीआई की एनर्जी है बट विथ बेटर स्किन केयर. लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 22. एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन नंबर 1. राशि जोन नंबर 2 लेकर आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में. तब तक तुम सुनो मिर्ची देयर बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला. इंस्टा और एक्स पर मुझे ढूंढो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस. दैट MIRCHIBRIS and WhatsApp number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Listener mein back to back gana sunega.
8: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: Priscilla, it's hot.
1: Hey there, Mirchi mornings, but this is your girl Priscilla signing off क्योंकि अब मेरे जाने का time हो चुका है. लेकिन the Indian rupee has hit a fresh all-time low now at 96.20 against the US dollar. The rupee reportedly crossed the 96 mark for the first time recently and has weakened further amid global tensions and rising oil prices. Meanwhile, Brent crude oil climbed above $110 a barrel after reports of an attack on the UAE nuclear plant. And हर देसी एक्सपर्ट जो मुझे फिलहाल सुन रहे हैं अपने दिमाग में ना मेंटल मैथ कर रहे होंगे कि अच्छा तो इंडिया ट्रिप का बजट और इमोशनल डैमेज दोनों इंक्रीज हो गया है अब. तो तुम जब तक अपनी चाय कॉफी ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, मैंने शो फिनिश कर दिया है. अब जा रही हूँ मैं, टाटा बाय बाय बोल के मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी. तब तक के लिए तुम बने रहो मिर्ची पर. बी गुड एंड बी काइंड, ऑफकोर्स खाओ पियो ऐश करो मजे करो मुझे याद करो. और अगर मुझे मिस करोगे तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन Instagram and X, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp जो तुम कभी करते नहीं हो मुझे 9033 मिर्ची, that's 9033647244, that's my number on WhatsApp. And right now stay tuned.

सब गजब मेरा क्रिप ट्रिप ग्रिप क्लिप विप ट्रिप सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब सब गजब

0: है दिल
1: तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो हिप्स लिप्स

0: कभी लस्सी में पाइनएप्पल स्क्वॉश या पाइनएप्पल एसेंस मिलाकर पिया है?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirchi. और अगर आपने कभी ऐसा weird combo try नहीं किया ना, तो I would say there's always a first time. Actually ना ये combo मैंने अपनी मासी के यहाँ एक शाम बचपन में पिया था, और बस तब से लेकर अब तक this is my go-to drink to refresh myself. और क्या है ना कि pineapple as a fruit भले ही हमारी life पे उतना hit ना हुआ हो, लेकिन as a flavor बड़ा hit है यार। मतलब बचपन से ही pineapple pastries, pineapple cakes हो या फिर pineapple wafers, ये हमने इतने चखे हैं कि जब ये लस्सी में स्वाद आया ना, तो I guess वो बचपन वाली याद, वो warmth का सुकून इस flavor को और hit बना गया। अभी एक बात बताओ, आप pineapple लस्सी को लेकर कन्विंस हुए या मैं थोड़ा और बोलू? हो गया ना, तो चलो फिर आपसे शेयर करने के लिए बातें और भी है। फिलहाल मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर. I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: बता रहा सर, आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
7: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
8: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ.
4: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ. ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ. ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ. ਕਾਮਨ 1 ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1. ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
10: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
11: अब मिर्ची खा.
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शाहरुख खान ने कहा है कि उन्होंने आज तक अपनी डेब्यू फिल्म नहीं देखी है, because he doesn't want to watch his first and last film.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the film Deewana, starring ऋषि कपूर, दिव्या भारती and शाहरुख खान, 1992 की second big hit थी. First being बेटा. इस फिल्म के लिए पहले सनी देओल को साइन किया गया था, बट व्हेन ही वॉक्ड आउट ऑफ द फिल्म तो धर्मेंद्र सजेस्टेड कि एक लड़का है जो सीरियल्स में काम करता है, एंड शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए फिर साइन किया गया. दो शाहरुख खान अपनी पहली फिल्म को लेकर बड़े ही अप्रिहेंसिव थे कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ए ग्रेड फिल्म है या बी ग्रेड फिल्म है. लेकिन जब ऋषि जी वाज साइंड इन फॉर अ रोल इन द फिल्म, ही बिकेम श्योर ऑफ द फिल्म. और क्योंकि फिल्म मेकर्स इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि शाहरुख के कंधों पर ये फिल्म चलेगी या नहीं, सो दे गेव ऋषि जी एन इम्पोर्टेंट रोल एंड अ बिगर रोल. हालांकि फिल्म का टाइटल शाहरुख खान के कैरेक्टर पर ही था, और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद और हिट होने के बाद शाहरुख खान ने प्रोड्यूसर्स की खूब टांग खींची और उन्हें हर इंटरव्यू में घसीटा. लेकिन क्यों, बताऊंगी आपको इन अ वाइल. अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म दीवाना की रिलीज और हिट के बाद शाहरुख खान मूवी के प्रोड्यूसर से बहुत नाराज थे।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। नाउ द सीन वाज कि शाहरुख खान के जो पेमेंट्स और ड्यूज थे वो पूरे नहीं किए गए थे, और कई सालों तक उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को अपने इंटरव्यूज के जरिए खूब सुनाया, खूब ताने मारे, जस्ट टू टीच देम अ लेसन। जहां शाहरुख खान वॉज एंग्री फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज इन द फिल्म, ऑन द अदर हैंड शूट के दौरान ऋषि जी वॉज सो मच इन लव विद द सॉन्ग ऐसी दीवानगी, सो मच सो दैट कि वो चाहते थे कि ये गाना वो शूट करे। लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सबको मिलकर ऋषि जी को कन्विंस करना पड़ा कि सर, ये गाना इस कैरेक्टर के लिए ही लिखा गया है, आपका कैरेक्टर दीवाना नहीं लेकिन शाहरुख खान का कैरेक्टर दीवाना सही। और तब जाके ऋषि जी को समझ में आया कि अच्छा चलो ठीक है, शाहरुख खान ओनली शुड शूट द सॉन्ग। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है आजकल, कंटेंट भी, रील्स भी, सॉन्ग्स भी, शोज भी, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है। लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं, और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है, इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे, कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही है। पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं, एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं, फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है, बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं। और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉप 20, एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट अप, गाना नंबर 20। देखो, शुरुआत में कहा था ना मैंने, एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है, लेकिन याद रखने वाली चीजें कम है। This is Dil Wale Chor by Aditya Rikhari and Shreya Ghoshal that features in Pati, Patni aur Wo Do. Sun lo bhai, yaad reh gaya to achhi baat hai.
4: Number 20.

एतबार। कुछ गाने अजीब होते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका मूड थोड़ी देर और साथ चलता है। इट्स मी सुरेन, एंड शायद इसलिए इस हफ्ते जब मैं एक ओथ सेरेमनी देख रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक फिल्म चल रही थी, नायक अनिल कपूर एक दिन के चीफ मिनिस्टर। और जब हमने वो फिल्म देखी थी, इट फेल्ट वाइल्ड, इट फेल्ट एक्साइटिंग, इट फेल्ट इमोशनल। लेकिन एक चीज क्लियर थी यार, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। बिकॉज लेट्स गेट रियल, कौन सा सुपरस्टार अपनी पीक पे पॉलिटिक्स में जंप करता है? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया था, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, लेकिन इस बार फीलिंग थोड़ी अलग थी। शायद इसलिए क्योंकि विजय अभी भी फुल सुपरस्टार मोड में है। He's got young energy, massive fan following, और लोगों के साथ वो इमोशनल कनेक्शन जो सिर्फ स्टार्स के पास होता है। और ओथ सेरेमनी देखते वक्त एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा, कभी कभी सिनेमा सिर्फ एस्केपिज्म नहीं होता, कभी कभी वो रियलिटी के बहुत नजदीक आ जाता है। और उस मोमेंट में नायक थोड़ी कम फिक्शनल लगी। Look, I don't know if Vijay's real life role as a chief minister नायक की तरह होगी, but man, it felt good. खैर, अब एक ऐसी आवाज जो पहली बार सुनते ही अटेंशन खींच लेती है। From मैं वापस आऊंगा, this is Mascara, sung by Nilanjana Ghosh Tastidar, जो दुनिया भर में A.R. रहमान के साथ बेस गिटार प्ले कर चुकी हैं। एंड सच कहूं तो सिर्फ रहमान साहब ही हैं जो किसी म्यूजिशियन में से एक ऐसी हॉन्टिंग आवाज डिस्कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा कतिया करूं वाला मूड है, थोड़ा सा मिस्ट्री है। दिस इज Mascara, डेब्यूइंग दिस वीक एट नंबर 18 फ्रॉम मैं वापस आऊंगा। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना
2: क्या बना
1: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
2: मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: से डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
4: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? यार नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
17: Number 14.

0: Tera Ho Jaun, a typically Sachin Jigar song with Junita Gandhi and Stebin Ben. And Arijit ke retirement ke baad, thank God, new voices are emerging. Varna har hero ki ek hi awaaz hua karti thi. वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, ना दैट इज द रियल गेम. स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है. और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी.
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में. द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज. मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स. चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट. नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कम्प्लीट कॉमेडी फिल्म. न्यू एक्टर्स ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में. अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस. एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म. मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया. लिटरली मेरा करियर वॉज, इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये अमेजिंग है क्योंकि बाहर से स्टारडम बहुत ग्लॉसी दिखती है, लॉन्चेस, हिट्स, फेम, फैन फॉलोइंग, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है. What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात कनेक्ट करती है, because for one moment वरुण धवन स्टार नहीं लगे, बस एक एक्टर लगे जो सरवाइव करना चाहते हैं. और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग. फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13.

वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, क्रिश मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, बस टैलेंट और एक अजीब सी ऑनेस्टी। और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

See, that's the thing. Perfect नहीं है, polish भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए. And फिर Bollywood enter हुआ. Song को scale मिल गया, stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए. And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में बैकग्राउंड में खड़े नजर आए, like extras. And that felt strange. और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है. लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज विवाह करवा दो. जी, यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: It's hot. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Number 3.

Who is this da has climbed number 2 and now suddenly the conversation gets much much bigger. It's me Suren aur aaj main aapko ek kitab ke bare mein kuch batana chahta hu. Baat hai 2010 ki Amish Tripathi aur unki likhi hui kitab The Immortals of Melhua Shiva Trilogy uska pehla hissa. Aur jab maine ye kitab pehli baar uthai to main bahut bahut andar chala gaya aur sach keh raha hu bahar hi nahi nikal paya. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं. मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती. एंड अब खबर है एंड इट्स नॉट कन्फर्म येट कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं. और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं. क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं? क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है? लेकिन ये सवाल ही गलत है यार. असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी. शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके. अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है. इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद. वो लोग कहां हैं, धुरंधर कहां हैं और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो. नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता. नंबर 1

0: शरारत 13 हफ्ते और नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
6: It's 12 PM. Mirchi time check.
3: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
6: It's 12:30 PM. Mirchi time check.
3: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab Mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

उदास सा गाना जिसमें अमिताभ बच्चन साहब उदास से मुंह फुलाए से घूमते रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, उदासी में भी एक अलग खूबसूरती होती है। अगला जो गाना हम सुनने वाले हैं उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब ऐसे मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। त्रिशूल फिल्म का गाना। वैसे आपको पता है जो त्रिशूल टाइटल है, ये यश चोपड़ा साहब ने राइटर सलीम जावेद को दिया था कि भाई ये टाइटल है, इस पे फिल्म लिख दो। और जब इन्होंने फिल्म लिखी तो यश चोपड़ा साहब को समझ नहीं आया कि ये स्टोरी टाइटल से कैसे रेलेवेंट है। तो उन्होंने समझाया कि इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक बाप, उसका एक जायज बेटा, एक नाजायज बेटा। वैसे अगर आप सोचें ना तो बहुत मायनों में त्रिशूल सिग्निफाइज द स्टोरी ऑफ द फिल्म, कि कैसे अमिताभ बच्चन एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके अपने ही बाप से बदला लेते हैं, कैसे अपनों के दिए घाव एक त्रिशूल के जैसे उनके सीने में उतर जाते हैं, कैसे पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। सो दैट वे बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी, से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी, बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा,
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: यार यार। ये भी ये बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Are you a South Asian parent of a child with special needs looking for help that understands you and your culture? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens and inclusive events year-round.
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: है दुहाई।
1: ज्यूल थीफ की शूटिंग करते करते प्रेम पुजारी की स्क्रिप्ट लिख डाली देवानंद साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी जब ज्यूल थीफ फिल्म की शूटिंग नेपाल में हो रही थी तब देवानंद साहब ने वहाँ पे दूरबीन से चाइना का बॉर्डर देखा और उनको ऐसा कुछ दिखा कि एक सिपाही छोटे से पपी के साथ, डॉगी के साथ खेल रहा है। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ सीन भी फिल्म में जरूर होगा। और अगर आप प्रेम पुजारी फिल्म देखें तो उसमें एक छोटा सा डॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम भी आगे बढ़ते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
6: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani Jeans, Charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: 90s के गाने की लाइंस हैं कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। शबाना आजमी जी ने एक बार एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था कि जिन एक्टर्स के साथ वो काम करती थी कौन लेट लतीफ होते थे, कौन टाइम पे होते थे। सुनिए।
1: There was a time when I was working with Sanjeev Kumar in a film by Gulzar Saab called Namkeen, and in the evening I was working in a film called Jwalamukhi with Prakash Mehra and Shatrughan Sinha. तो ये तो लिखा हुआ था कि 7 बजे की शिफ्ट है, लेकिन संजीव कुमार फिल्म सिटी में 12:30 बजे से पहले नहीं पहुंचा, और फिर 2 बजे की शिफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा 5:30 बजे से पहले नहीं पहुंचे। बच्चन साहब एंड शशि कपूर फर्स्ट पर्सन टू अराइव ऑन द सेट, दीज वर द टू पीपल हु वुड जस्ट, आप अपनी घड़ी, नाउ दीज वर पीपल यू एडमायर्ड, एंड देन इट इज टू यू हुम यू चूज टू एम्युलेट।
0: क्या बात है भाई, चलिए अभी देर नहीं करते, टाइम हो गया है बहुत ही ब्यूटीफुल गाना सुनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: It's 1 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. It's 1:30 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only

देखूं। भाई कुछ दिन पहले ना मैं टीवी पर नसीब फिल्म देख रही थी और मेरे ऐसे मतलब होश उड़े जा रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब लिटरली मैं फिल्म देखते हुए सोच रही थी, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, कितने सारे एक्टर्स। और मनमोहन देसाई साहब की ना इस बात में तो दाद देनी पड़ेगी भाई, मल्टी स्टारर फिल्म्स वो जो बनाते थे उसमें इतने सारे एक्टर्स होते थे। सोचिए आप इतने सारे एक्टर्स को मैनेज करना, हैंडल करना, उनके ईगो क्लैशेस, उनके टैंट्रम्स, उनकी पंक्चुअलिटी, जो भी उनकी डेट्स वगैरह वो सब हैंडल करना, उफ कितना मुश्किल हो जाता होगा। ये नसीब फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रीना रॉय, ऋषि कपूर, किम, और फिर विलन्स में सब भर रखे हैं भाई, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, फिर प्राण साहब भी हैं, कितने सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। Hats off to this guy, मनमोहन देसाई साहब या जो भी उस टाइम पे मल्टी स्टारर फिल्म्स बनाते थे, सब दाद के काबिल हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1981 की फिल्म दर्द का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नक्श लियालपुरी साहब ने इसे लिखा है। वैसे इनका असली नाम जसवंत राज शर्मा था, नक्श लियालपुरी इनका पेन नेम था। इनकी एक और गजल मैं पढ़ रही थी, तुझको सोचा तो खो गई आँखें, दिल का आईना हो गई आँखें, खत का पढ़ना भी हो गया मुश्किल, सारा कागज भिगो गई आँखें, कितना गहरा है इश्क का दरिया, इसकी तह में डुबो गई आँखें, दो दिलों को नजर के धागे से एक लड़ी में पिरो गई आँखें, नक्श आबाद क्या हुए सपने और बर्बाद हो गई आँखें। वाह वाह वाह वाह। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक और सुंदर गजल सुनेंगे, शहरयार साहब की लिखी हुई, उमराव जान फिल्म से। सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. La vez bala, murga.
3: Mirchi, murga.
4: Hello? Hello?
5: Sir, very good evening. Bank support.
4: हाँ बोलिए
5: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
4: बनवाया था भैया, क्या हो गया? क्या
5: बात है सर, आप तो सर पूरा बता दिए.
4: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
5: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
4: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
5: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
4: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
5: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
4: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
5: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
4: पागल पागल है,
5: अब तो देने पड़ेंगे सर.
4: हेलो.
5: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
4: कौन बोल रहा है? विपिन?
5: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
4: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
5: अब तो फंस गए सर.
4: हेलो
6: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
4: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
6: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
4: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
6: जी? अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
12: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है मोहम्मद रफी साहब ने अपना जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया था उसकी लाइंस क्या थी? तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। 1981 में रिलीज हुई फिल्म आस पास का ये गाना है। ऐसा सुनने में आता है कि रफी साहब ने ये गाना अपनी डेथ के कुछ आवर्स पहले उसी दिन 31 जुलाई 1980 को ही रिकॉर्ड किया था। खैर, ये गाना रिकॉर्ड हुआ था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए। और एलपी और रफी के सुपर्ब कॉम्बिनेशन का एक और गाना यहाँ पर सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: आई डोंट नीड टू टेल यू, न्यू यॉर्कर्स आर पेइंग मोर फॉर एवरीथिंग, रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, एवरी सिंगल मंथ। द ऑफिस दैट्स सपोज्ड टू प्रोटेक्ट अस, इट्स ऑन द साइडलाइंस। आई एम राज गोयल। As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
7: Raj Goyal, affordability watchdog for comptroller.
8: Paid for by Raj Goyal for New York State comptroller.
9: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: 1972 की फिल्म गोरा और काला, जिसमें गोरा भी राजेंद्र कुमार बनते हैं, काला भी राजेंद्र कुमार बनते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, दो जुड़वा भाइयों की स्टोरी है जिनमें फर्क ये होता है कि एक गोरा होता है और दूसरा किसी डिसऑर्डर की वजह से काला। इस रोल के बारे में एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए राजेंद्र कुमार साहब ने क्या कहा था।
1: गोरा और काला भी करने की वजह जो ये थी, वो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक काली का और एक गोरे, तो वो जो मौका था एज एन एक्टर वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काले का रोल बहुत पसंद था, उसको बहुत शौक से मैंने किया और पूरा पांव से लेकर सर तक काला बनना पड़ता था और 3-3.5 घंटे लगते थे। तो उसके बाद फिर जब गोरे की बारी आती थी तो 1.5 घंटा उसको साफ करने में लगता था, फिर गोरा बनना पड़ता था। खैर, तो बड़ा मजा आता था उसमें।
0: यार, पुराने जमाने में इनको ये सब करने में ज्यादा दिक्कत आती होगी ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, रिसोर्सेज नहीं थे, और उसी वजह से ना, क्योंकि अब हमको इतने इफेक्ट्स और CGI वाले सब चीजें देखने की आदत हो गई है, तो पुरानी फिल्मों में जब ये सब चीजें देखते ना, कई बार थोड़ी फनी भी लगती है। खैर, दोज वर द डेज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है बप्पी दा ने, बप्पी लायरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड भी बनाया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रिकॉर्ड था एक ही साल में 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड करने का। यस, दिस हैपेंड इन 1986। इन 33 फिल्मों में 15 तो हिंदी फिल्में थी भाई, वो वैसी वाली फिल्में जो 80s में नहीं आई थी, मैं बलवान, इल्जाम, इंसाफ की आवाज, सिंहासन, मेरा धर्म, ऐसी फिल्में। फैक्ट्री लगी हुई थी भाई, फैक्ट्री, गानों पे गाने, गानों पे गाने निकल रहे थे। चलिए अभी जो गाना निकल कर आया है बप्पी दा का कंपोज किया हुआ, इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

लाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकन हस्बैंड फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े।

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छू

डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया

सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए शर्मिला टैगोर जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर गुलजार साहब थे, और आपको पता है गुलजार साहब इस रोल के लिए पहले जरीना वहाब, जो तब नई नई थी, उनको कास्ट करने का सोच रहे थे। लेकिन शर्मिला टैगोर जी को जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो ये रोल करना चाहती हैं। और जिस तरह फिल्म का सब्जेक्ट था, गुलजार साहब को लगा कि कोई पॉपुलर एक्ट्रेस होगी तो फिल्म को बेचने में आसानी होगी, उसकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होगी, इसीलिए फाइनली शर्मिला टैगोर जी को साइन किया गया। चलिए, दाने दाने पे होता है खाने वाले का नाम, रोल रोल अवार्ड अवार्ड पे होता है उसे पाने वाले का नाम। मेरा नाम है चारू, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स और मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
4: है। वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
4: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: यार
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Oh no!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
13: लिसनर एम आई, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only on Mirchi.

आय हाय हाय हाय, दो टके की नौकरी और लाखों का सावन, क्या कंपैरिजन बिठाया है मलिक साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वर्मा मलिक इस गाने के लिरिसिस्ट है, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम। और ये जो गाना है ना, ये एक्चुअली फिल्म में जो मौसमी चैटर्जी का किरदार था उन पे पिक्चराइज्ड होना था, लेकिन उस टाइम वो सॉर्ट ऑफ फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, तो जीनत अमान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। एंड अगर आप फिल्म देखें ना, तो जीनत अमान का जो किरदार है, उनका जो रोल है, उसके साथ ये गाना का जो मूड है, जिस तरह का ये गाना है, वो जाता नहीं है। चलिए अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Inefficient.
4: Very complex.
5: Clumsy ho.
6: Confusion hi confusion.
3: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: खयाम साहब की ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है खयाम साहब जब 16-17 साल के थे, ये मैं 1943-44 की बात कर रही हूँ, तब जब इन्होंने अपने घर में कहा कि ये फिल्मों में एक्टर बनना चाहते हैं, तब इनके साथ क्या हुआ एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने शेयर किया था।
1: एक्टिंग के लिए ये हुआ कि घर वालों ने हमें निकाल दिया और पिटाई भी हुई, लेकिन एक माहौल था घर में शायरी का एंड मौसीकी के रिकॉर्ड सुनना, शायरी और अदबी किताबें, कुतुबखाना, वो एक घर में माहौल था। लेकिन इसकी हमने सजा भुगती और घर निकाला, कहेंगे देश निकाला कहें, वो हमने सहा
0: जी। और घर से निकले तो पंजाब के राहों से होते हुए, लाहौर से होते हुए, लुधियाना से होते हुए बॉम्बे पहुंचे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुन लेते हैं खयाम साहब की एक और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. It's 3 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. It's 3:30 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab Mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्तों मंडे का मतलब रीसेट का बटन दब चुका है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वीकेंड के बाद जब अलार्म्स वापस सीरियस हो जाते हैं ना, तब लगता है कि गेम फिर से शुरू हो चुका है। जी हाँ, फ्रेश पेज यानी फ्रेश चांस। गलतियाँ कल ही रह जाती है, आज सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती है। क्योंकि मंडे थोड़ा डिमांडिंग जरूर होता है, पर साथ ही एक साइलेंट प्रॉमिस भी करता है कि इस वीक जरूर कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी इस वीक का रीसेट हो चुका है तो मुझे जरूर बताना ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI कि इस मंडे को रीसेट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए कौन सा खास गाना बजाओ। फिलहाल के लिए आपके मंडे को रीस्टार्ट करने के लिए ये धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
3: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
12: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
11: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
13: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
4: इट्स 4 पीएम मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस It's 4:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
5: Listener mein back to back gana sunega.
6: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम का लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मंडे इवनिंग। वैसे मदर्स डे का वीकेंड पास ऑन हो चुका है और यार इस वीकेंड को ना एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। मतलब सोचिए ना, कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो हर जगह मॉम्स ही मॉम्स दिखाई देते हैं, ओल्ड फोटोज, इमोशनल कैप्शन, चाइल्डहुड स्टोरीज, क्योंकि यार हर कोई ना अपनी मॉम को बड़े प्यारे तरीके से दिल खोल के विश करना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच ना मुझे बचपन की वो वाली फीलिंग याद आती है। याद है जब हमें रिलेटिव्स कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं एज शगुन या प्यार, तो हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से ना थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है। बस मॉम्स को भी ना शायद वैसी ही फीलिंग आती होगी। ऊपर से तो वो बोलती है कि यार इसकी क्या ज़रूरत।

है, पर अंदर ही अंदर ना वो एक्स्ट्रा हग, वो पोस्ट, वो फ्लावर्स उनके चेहरे पे भी ना एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले ही आती है, क्योंकि कभी कभी अप्रिसिएशन लाउड नहीं होता, बस आंखों में हल्का सा स्पार्कल लेके आ जाती है। तो अगर आपने भी अपनी मोम को थोड़ा एक्स्ट्रा फील करवाया है, ट्रस्ट मी, उन्हें ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपकी मोम का क्लासिक रिएक्शन क्या था जब आपने उन्हें मदर्स डे विश किया। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए मम्मी स्पेशल ये अगला गाना राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La birba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K 35/14A 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. ये ठीक कैसे होगा, आप मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग. इन्वेस्ट इन प्योर गोल्ड बार्स विद राज जूल्स.
7: वी हैव अ रेडी स्टॉक एट राज जूल्स. बाय गोल्ड बार्स नाउ एट राज जूल्स.
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
9: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
13: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
14: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
15: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
16: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
17: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
18: अब मिर्ची खा.
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे लिए कोई अबाव एंड बियॉन्ड जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए कि हम जिम ज्वाइन करें तो यार ट्रेनर सिर्फ एक्सरसाइज ही ना बताए बल्कि पोस्चर भी करेक्ट करे, प्रोग्रेस भी चेक करे और इंजरी होने से पहले ही रोक ले। यार कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे अबाव एंड बियॉन्ड सभी अपने काम में जाए। क्योंकि यार बड़े बड़े डिसीजन जैसे कि होम बाइंग भी एक ऐसी ही चीज होती है जहां सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं होता, राइट गाइडेंस, राइट प्लानिंग और वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है जो हमें लॉन्ग टर्म में एक सही डिसीजन लेने में मदद करें। और इसी एक्स्ट्रा माइल के बारे में आज बात करने वाले हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू।

दिन भर की भागदौड़ में रह गई हो बॉलीवुड की न्यूज पेंडिंग, तो मैं हूं ना आपको बताने व्हाट्स ट्रेंडिंग। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हां, सस्पेंस लवर्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट, दृश्यम 3 का ट्रेलर आ चुका है। और वैसे यार, इस मूवी में मोहनलाल रिटर्न्स एज जॉर्ज कुट्टी, और ये ट्रेलर ना बहुत ही ज्यादा डार्क चैप्टर रिवील करता है एज ओल्ड सीक्रेट्स कम बैक टू हॉन्ट हिम। वैसे दृश्यम फ्रेंचाइज के बारे में यही एक बहुत बड़ा चार्म है कि अलाउड नहीं होती, लेकिन दिमाग को फुल टाइम काम पे लगा देती है, क्योंकि हर सीन में डाउट, हर साइलेंस में एक क्लू होता है। तो आप भी बताना दोस्तों, दृश्यम देखते वक्त क्या आप भी डिटेक्टिव बन जाते हो या बस एंड ट्विस्ट का वेट करते हो? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
2: It's 5:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods खाओ तो जानो. Brought to you by Deep Foods. Deep Foods खाओ तो जानो.
4: This hour is brought to you by Raj Jewels.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, बॉलीवुड कॉमेडी का एक फेवरेट फॉर्मूला वापस आ रहा है, रिलेशनशिप कंफ्यूजन, ऑकवर्ड सिचुएशन और फुल ऑन फैमिली स्टाइल केओस। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर आ चुका है और इसमें फीचर हो रहे हैं आयुष्मान खुराना, वमिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, डायरेक्टेड बाय मुद्दतर अजीज। वैसे ट्रेलर का वाइब तो काफी क्लियर है, रोमांस भी है, कन्फ्यूज, वमिका गाबी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, डायरेक्टेड बाय मुद्दतर अजीज। वैसे ट्रेलर का वाइब तो काफी क्लियर है, रोमांस भी है, कंफ्यूजन भी है और

कि वाई आयुष्मान खुराना, वाई आर यू डूइंग सच प्रोजेक्ट्स? वैसे थोड़ा सा मुझे इस वजह से यू नो क्यूरियोसिटी तो है कि शायद आयुष्मान ने स्क्रिप्ट देखी होगी, पसंद की होगी, क्योंकि आयुष्मान की स्क्रिप्ट चूजिंग पे थोड़ा सा भरोसा तो है. तो हाँ, उस वजह से थोड़ा लगता है कि शायद कोई हटके स्टोरी हो सकती है, लेकिन ट्रेलर देख के लग तो नहीं रहा है कि ज़्यादा हटके होने वाली. वैसे आप ही बताओ दोस्तों, आपको रिलेशनशिप कॉमेडी पसंद है, या आप भी बोलते हो कि यार रियल लाइफ में इतना कन्फ्यूजन है, अब वही चीजें स्क्रीन पे नहीं देखनी? जरूर बताना. टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI. और तब तक के लिए आयुष्मान का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskaba la puskaba la sakaba la. Burka, burka. Burka. La vizba la burka. Milci burka.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
2: है सर, आप तो सर पूरा बता दिए.
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
3: जी? अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है, और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडर रेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Are you a South Asian parent of a child with disabilities or special needs looking to connect with similar families? Reach out to SKN Foundation's SCOPE program for their parent support group, educational empowerment programs, IEP consultations, job skills training for teens, and inclusive events year-round.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नर कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
7: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स। कृष्णा ज्वेलर्स, Oak Tree Road, ईसलिन।
8: लिस्नर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माई माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों, एडल्टहुड का भी एक अजीब सा वर्जन होता है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योर सेल्फ वापस आ जाता है। और मजे की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहां लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइम। एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, That is a Desi Girl, sung by Shankar Mahadevan, Sunidhi Chauhan and Vishal Dadlani. ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम भी बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K/5/14A फर्स्ट फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा? मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
13: अब मिर्ची खा.
15: Radio Mirchi, it's hot.

की टाइम। शमशादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हाँ, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कम्पोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कम्पोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैगलाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी यार, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी IDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Your voice, your ideas, your future. Sujit Singh is running for Congress in New Jersey 12 to bring your voice, your ideas and your concerns to Washington and turn them into real legislative action for our district. It is your opportunity to shape the priorities that matter to our families and communities. Visit singforcongress.org and share your priorities and wishes today. Remember, your voice, your future. Sujit Singh for Congress. Paid for by Sujit Singh for Congress.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
7: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
6: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है।
6: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने, यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं, एंड दैट इज़ खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती, लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं, आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं, लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना, राइट हियर ऑन मिर्ची, और कहाँ।